तुझ ही माहे, तुझ बिन दूजा कोई नाहे। जी जंत सब तेरा खेल, विजोग मिल विछुड़या संजोगी मेल। जिसनों तू जानाहे सोई जन जाने, हर गुण सद ही आख वखाण। जिन हर सेवया तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया। तू आपे करता तेरा किया सब होए, तुद बिन दूजा अवर न कोए। तू कर कर वेखह जानह सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए। आसा महला पहला। तित सरवरड़ै पहले निवासा, पानी पावक तिन्हे किया। पंकज मोह पग नहीं चालै, हम देखा कह डूबियले। मन एक न चेत समूण मना, हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहाओ। ना हो जति सती नहीं पड़या, मूरख मुग

आप हाथ दे मुझे उबरिए, मरण काल का त्रास निवरिए, पूजो सदा हमारे पच्छा, श्री अस तुझ जू करे अहो रक्षा।

बप धरा काल पाए शिवजू अवतरा काल पाए कर विष्णु प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा।

हे हमारा जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जच्छन उपजायो, आदंत कै अवतारा, सोई गुरु समझ हो हमारा, नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिने आप सुवारी, शिवकन को सब गुण सुख दियो, सत्रन को पलमो बद कियो, कट कट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत, चीटी ते कुंचर अस थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला, संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी, एक एक की पीर पछाने, कट कट के पट पट की जाने, जब उदकर्ख करा कर तारा, प्रजा तरत तब देह अपारा, जब आकर्ख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह तार सब हूँ, चेते बदन सृष्ट सब तार है,

अनिल अनाद असंभ ताका मूड उचारत भेदा जाखु भेव न पावत वेदा ताको करपाहन अनुमानत महामूड कछ भेद न जानत महादेव को कहत सदा सेव निरंकार का चीनत नह पेव आप अपनी बुध है जेती वर्णत भिन्न भिन्न तुह तेती तुमरा लखा न जाए पसारा केह विद सजा प्रथम संसारा एकै रूप अनूप स्वरूपा रंक भयो राव कहि भूपा अंडज जेरज सेतज कीनी उत्पुज खान बहुर रच दीनी कहूं फूल राजा हवै बैठा कहूं सिमट भयो संकरि कैठा सिगरी सृष्टि दिखाए अचंपव आद जुगाद स्वरूप स्वयं पव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार असिख संगरो दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रणकाता जे अस तुज तव सरनी परे तिनके दुष्ट दुखत हवै मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार त्यै है ताके काल निकट नह ऐ है रक्षा हुए ताहे सब काला दुष्ट अरिष्ट टरै तत्काला कृपा दृष्ट तन जाहे निहरिहु ताके ताप तनक मह हरिहु रिद्ध सिद्ध कर्मु सब होई दुष्ट छाह छव सकै न कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फास्ते ताहे उबारा जिन नर

रहीम कुरान कुरान अनेक कहे मत एक न मान्यो सिमृत शास्त्र वेद सब बहुभेद कहे हम एक न जान्यो श्री यशपान कृपा तुमरी कर मैं न कहूँ सब तो हे बखान्यो दोहरा

जिस का सबस अधारु। जे को खावे जे को पुंचे तिसका हुए उदारु। एह वस्त तजी नह जाई नित नित रख उरतारु। तम संसार चरण लग तरिए सब नानक ब्रह्म।

सतगुर सज्जन मिलिया, नानक नाम मिले ता जीवा, तन मन थीवै हरिया। पौड़ी तिथै तू समरथ, जिथै कोई नाही, उथै तेरी रख अग्नि उदर माहे। सुन कै जमके दूत, नाए तेरे छड़ जाहे, पाओ जल बिखम सगाहु, गुर शब्दी पार पाहे। जिनको लगी प्यास अमृत से खाहे,

जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाहे, तिस साहिब की टेक नानक मने बाहे। जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाहे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की।

कोर जबद मैले राज करेगा खालसा की है ना को पार ऐसा मिलेंगे बजे शरण जो वाहेगुरु नाम जहाज है चढ़े दो तेरे पा जो शरदा कर

सुनिहार सत्रियाकाल। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।

जय कर कीरत आखी ऐ करते कहोए बिचारो, तित कर गावो सोहेला सिवर सिरजन हारो। तुम गावो मेरे निर्भव का सोहेला, हम वारी जित सोहेला सदा सुख होए रहाओ। नित नित जियड़े संभालियन देखेगा देवन हार, तेरा दाना कीमत ना पवै तिस दाते कौन समार। संबत साहा लिखिया मिलकर पावो तेल, देहो सजन असी सड़िया ज्यो वै साहिब से मेल। घर कर एहो पाहो चा सदड़े नित पवन, सजन हारा सिमरी ऐ नानक से दे आवन। राग आसा महला पहला, छे घर छे गुर छे उपदेश, गुर गुर एको वेस अनेक। बाबा जय कर करते कीरत हुए, सो कर राख वडाई तोए रहाओ। विश्वे चस्या कड़िया पहरा, थिति वारी माओआ। सूरज एको रुत अनेक, नानक करते के केते वेस। राग तनासरी महला पहला, गगन में थाल रव चंद दीपक बने। तारका मंडल जनक मोती, धूप मल आन लो पवन चवरो करे। सकल बन राय फूलंत ज्योति, कैसी आरती होए पव खंडना। तेरी आरती अनहता शब्द वा जंत तेरी रहाओ। सहस्ताव नैन नन नैन है तोहे कहो, सहस मूरत नन्ना एक तोही। सहस पद बिमल नन एक पद, गंध बिन सहस तव गंध इव चलत मोही। सब मह जोत जोत है सोए, तिस दे चानन सब मह चानन होए। गुरसाखी जोत प्रगट होए, जोत इस पावै सो आरती होए। हर चरण कमल मकरंद लो, प्रित मनो अंधनो मोहे आही प्यासा। कृपा जाल देह नानक सारंग कहो, जाते तेरे नाए वासा। राग गौड़ी पूर्वी महला चौथा, काम क्रोध नगर भरिया मिल साधु खंडल खंडा। हे पूर्व लिखत लिखे गुरु।

मरण पवखंडा हे। अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर बहु शोभ खंड ब्रह्मंडा हे। हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे हर राख राख बड़ वड्डा हे। जन नानक नाम आधार टेक है हर नामे ही सुख मंडा हे। राख

0: सिमरै से जन जिनको प्रभ मया
1: नानक दिन जन चरणी परा
0: हर सिमरन कर भगत प्रगटाए
1: हर सिमरन लग वेद उपाए
0: हर सिमरन भय सिद्ध जति दाते
1: हर सिमरन नीच चोह कोट जाते
0: हर सिमरन तहारी सब तरना
1: सिमर सिमर हर कारण करना
0: हर सिमरन की ओ सगल अकारा
1: हर सिमरन में आप निरंकारा
0: कर कृपा जिस आप बुझाया
1: नानक गुरमुख हर

0: अष्टपदी रमैया के गुण चेत पराने
1: कवन मूर्ते कवन दृष्टाने
0: जिन तों साज सवार सिंगारिया
1: घर गन में जिने वारिया
0: बार व्यवस्था तुझे प्यारा दूध
1: पर जो गन भोजन सुखसूद
0: बिरद भया ऊपर साख सैन
1: मुख प्याऊ बैठ को दैन
0: इहो निर्गुण गुण कछु न बूझै
1: दस लियो तर नानक जीजे
0: जिह प्रसाद धर ऊपर सुख बसै
1: सतप्रसाद मीत बनता संग रसै
0: जिह प्रसाद पीवै शीतल जला
1: सुखदाई पवन पाव कुमला
0: जे प्रसाद भोगै सब रसा
1: समग्री संग साल रसा
0: दीने हस्त पाव करन नेत्र रसना
1: त्याग और समरचना
0: ऐसे दोख मूड अंध ब्यापे
1: नानक काढ लियो प्रभु आपे
0: आद अंत जो रखन हार
1: तिस्यो प्रीत न करे गवार
0: जाति सेवा नवनिध पावै
1: तास्यो मूड़ा मन नहीं लावै
0: जो ठाकुर सद सदा हजूरे
1: को जान दूरे
0: जाकी टहल पावे दरगह मान
1: सारे मुगद जान
0: सदा सदा ए भूलन हार
1: नानक राखन हार पार
0: रतन त्याग कौटी संग रचै
1: छोड़ झूठ समच
0: जो छड़ना सो अस थिर कर माना।

0: समझे पूरा।
1: कहा बिसन पद गावे गूंग,
0: यतन करे तो पीसर पंग।
1: कह पिंगल पर्वत पर पवन,
0: नहीं हो तुम आस गवन।
1: करतार करुणा मैं दीन बेनती करे,
0: नानक तुमरी कृपा तरे।
1: संग सहाई सो आवे नाचीत,
0: जो आई तास प्रीत।
1: बलुआ के ग्रह पीतर बसा,
0: अंधकेल माया रंग रसा।
1: दृढ़ कर मने मने प्रतीत,
0: आनावे मुड़े चीत।
1: बैर विरोध काम क्रोध मोह,
0: झूठ विकार मानो त्रो।
1: याहू जुगत बिहाने कई जन्म,
0: नानक राख लियो अपन कर कर्म।
1: ठाकुर तुम पै अरदास,
0: जियो पिन सब तेरी रास।
1: तुम मात पिता हम बा

0: जेह प्रसाद शक्ति अमृत खाहे,
1: जिस ठाकुर को रख मन माहे,
0: जेह प्रसाद सुगंध तन लावह,
1: तिसको सिमरत परम गत पावह,
0: जेह प्रसाद बसह सुख मंदर,
1: तिसे त्याय सदा मन अंदर,
0: जेह प्रसाद गृह संग सुख बसना,
1: आठ पहर सिमरौ तिस रसना,
0: जेह प्रसाद रंग रस भोग,
1: नानक सदा त्याय त्यावन जोग,
0: जेह प्रसाद पाठ पटंब रहनावह,
1: तिसे त्याग कत अवर लुभावह,
0: जेह प्रसाद सुख से सोई जय,
1: मन आठ पहर ताका जस गावी जय,
0: जेह प्रसाद तुझ सबको मन,
1: मुख ताको जस रसन बखाना,
0: जेह प्रसाद तेरो रहता धर्म,
1: मन सदा त्याय केवल पार ब्रह्म,
0: रब जी जब दरगह मान भावह,
1: नानक पात से ती कर जावह,
0: जेह प्रसाद आरोग कंचन देही,
1: लिव लावो तिस राम स्नेही,
0: जेह प्रसाद तेरा ओला रहत,
1: मन सुख पावह हर हर जस कहत,
0: जेह प्रसाद तेरे सगल सिद्र ढाके,
1: मन सरणी पर ठाकुर प्रभ ताकै,
0: जेह प्रसाद तुझको न पहुँचे,
1: मन सास सास सिमरहु प्रभ ऊचे,
0: जेह प्रसाद पाई दुर्लभ देह,
1: नानक ताकी भगत करे,
0: जेह प्रसाद आप उखन पहरी जय,
1: मन तिस सिमरत क्यों आलस की जय,
0: जेह प्रसाद अश्व हस्त असवारी,
1: मन तिस प्रभ कौ कबहू ना बिसारी,
0: जेह प्रसाद बाग मिलख तना,
1: राख परोए प्रभ अपने मना,
0: जिन तेरी मनवंत बनाई,
1: उठत बैठत साध तिसहते आई,
0: तिसहते आए जो एक अलख है,
1: इहां उहां नानक तेरी रखै,
0: जेह प्रसाद करह पुन बहुदान,
1: मन आठ पहर कर तिसका ध्यान,
0: जेह प्रसाद तू आजार व्यवहारी,
1: तिस प्रभ को सास सास चितारी,
0: जेह प्रसाद तेरा सुंदर रूप,
1: सो प्रभ सिमरौ सदा अनूप,
0: जेह प्रसाद तेरी नीकी जात,
1: सो प्रभ सिमर सदा दिन रात,
0: जेह प्रसाद तेरी पत रहै,
1: गुर प्रसाद नानक जस कहै,
0: जेह प्रसाद सुनह कर्ण नाद,
1: जेह प्रसाद पेखै बिस्माद,
0: जेह प्रसाद बोलह अमृत रसना,
1: जेह प्रसाद सुख सहजे बसना,
0: जेह प्रसाद हस्त कर चल है,
1: जेह प्रसाद संपूर्ण फलै,
0: जेह प्रसाद परम गत पावह,
1: जेह प्रसाद सुख सहज समावै,
0: ऐसा प्रभ त्याग वर कत लागो,
1: गुर प्रसाद नानक मन जागो,
0: जेह प्रसाद तू प्रगट संसार,
1: तिस प्रभ कौ मूल न मनो बिसार,
0: जेह प्रसाद तेरा प्रताप,
1: रे मन मूड तू ताकौ जाप,
0: जेह प्रसाद तेरे कार्ज पूरे,
1: तिसे जान मन सदा हजूरे,
0: जेह प्रसाद तू पावह साज,
1: रे मन मेरे तू तास्यो राज,
0: जेह प्रसाद सबकी गत होए,
1: नानक जाप जपै जप सोए,
0: आप जपाए जपै सुनाओ,
1: आप गावाए सो हर गुण गाओ,
0: प्रभ कृपा ते होए प्रगास,
1: प्रभु दया ते कमल बिगास,
0: प्रभ सुप्रसन्न बस मन सोए,
1: प्रभ दया ते मत उत्तम होए,
0: सर्व निधान प्रभ तेरी मया,
1: आपो कशु न किन्हू लया।

0: साध जना की अचरज कथा अष्टपदी साध कै संग मुख उज्जल होत
1: साध संग मल सगली खोत
0: साध कै संग मिटे अभिमान
1: साध कै संग प्रगटे सुज्ञान
0: साध कै संग बुझे प्रभ नेरा
1: साध संग सब होत निवेरा
0: साध कै संग पाए नाम रतन
1: साध कै संग एक ऊपर जतन
0: साध की महिमा वरने कौन प्राणी
1: नानक साध की शोभा ब्रह्मा है समानी
0: साध कै संग अगोचर मिले
1: साध कै संग सदा प्रभुल
0: साध कै संग आवे बस पंचा
2: साध संग अमृत रस पंचा
0: साध संग होए सब की रेन
2: साध कै संग मनोहर बैन
0: साध कै संग नकत हूं तावे
2: साध संग पावे
0: साध कै संग माया ते भिन्न
2: साध संग नानक प्रभ सो प्रसन्न
0: साध संग दुश्मन सब मीत
2: साधु कै संग मां पुनीत
0: साध संग किस्यो नहीं बैर
2: साध कै संग न बिगा पैर
0: साध कै संग नाही को मंदा
2: साध संग जाने परमानंदा
0: साध कै संग नाही हो ताप
2: साध कै संग तजै सब आप
0: आपे जाने साध बढ़ाई
2: नानक साध प्रभु बनियाई
0: साध कै संग न कबहू तावे
2: साध कै संग सदा सुख पावे
0: साध संग बस अगोचर लाहै
1: साधु कै संग अजर सहै
0: साध कै संग बसै थान ऊचे
2: साधु कै संग माल पूछे
0: साध कै संग दृढ़ सब धर्म
2: साध कै संग केवल पारब्रह्म
0: साध कै संग पाए नाम निधान
2: नानक साधु कै कुर्बान
0: साध कै संग सब कुल उधारे
2: साध संग साजन मीत कटम न सारे
0: साधु कै संग सो धन पावे
2: संत कै सब को बरसावे
0: साध संग धर्म राय करे सेवा
2: साध कै संग शोभा सुर देवा
0: साधु कै संग पाप पलायन
2: साध संग मत गुण गायन
0: साध कै संग सर्व थान गम
2: नानक साध कै संग सफल जनम
0: साध कै संग नहीं कछ काल
2: दर्शन पेट होत निहाल
0: साध कै संग कलूखत हरै
1: साध कै संग नरक पर हरै
0: साध कै संग इहां उहां सोहेला
1: साध संग विचरत हर मेला
0: जो इच्छा सोई फल पावै
1: साध कै संग न मिलता जावै
0: पार ब्रह्म साध रिद बसै
1: नानक उदरै साध सुन रसै
0: साध कै संग सुनो।

0: साध संग भय आज्ञाकारी
1: संगत हमारे
0: साध कै संग मिटे सब रोग
1: नानक साध बेटे संयोग
0: साध की महिमा वेद न जाने साध की उपमा ते हो गुण ते दूर
2: साध की उपमा रही पर पूर
0: साध की शोभा का नाही अंत
1: साध की शोभा
0: साध की शोभा ऊ

0: सलोक उस तत करे अनेक जन अंत न पारावार नानक रचना प्रभ रची बहुविध अनेक प्रकार अष्टपदी कई कोट होए पुजारी
1: कई कोट आचार विहारी
0: कई कोट भय तीर्थ वासी
1: कई कोट मन परम उदासी
0: कई कोट वेद के श्रोते
1: कई कोट विसर होते
0: कई कोट आत्म ध्यान धार
1: कई कोट कब का विचार
0: कई कोट नव तन नाम ते आवे
1: नानक करते कांत न पावे
0: कई कोट भय अभिमानी
1: कई कोट अंधे ज्ञानी
0: कई कोट किरपन कठोर
1: कई कोट भेग आत्म
0: कई कोट पर दर्ब को निरह
1: कई कोट पर दुख न करे
0: कई कोट माया श्रम माहे
1: कई कोट पर देश बरमाहे
0: जित जित लावो तित तित लगना
1: नानक करते की जाने कर्ता रचना
0: कई कोट सिद्ध जति जोगी
1: कई कोट राजे रसोगी
0: कई कोट पंखी सर्प उपाय
1: कई कोट पात्र बिरख न बजाए
0: कई कोट पवन पानी बैसंतर
1: कई कोट देश भू मंडल
0: कई कोट सस्य सूर नक्षत्र
1: कई कोट देवदार इंद्र से छत्र
0: सगल समग्री अपने सूत धार
1: नानक जिस पावे तिस ने सारे
0: कई कोट राजस तामस सातक
1: कई कोट वेद प्राण समर्थ अरसास
0: कई कोट किए रतन समुंद
1: कई कोट नाना प्रकार जंत
0: कई कोट किए चैर जीवे
1: कई कोट गिरी मेर स्वर्ण दीवे
0: कई कोट जख किन्नर पिशाच
1: कई कोट भूत प्रेत शुक्र मृग
0: सब ते मेरा सब हूँ ते दूर
1: नानक आप लिप्त रहा भरपूर
0: कई कोट पाताल के वासी
1: कई कोट नरक सुर्ग नवासी
0: कई कोट जन्म जीव मर
1: कई कोट बो जोनी फिर
0: कई कोट बैठत ही खाहे
1: कई कोट काले तक पाहे
0: कई कोट किए धनवंत
1: कई कोट माया में चिंत
0: जह जह पाणा तह तह राखे
1: नानक सब कुछ प्रभु के आते
0: कई कोट भय बैरागी
1: नाम नाम संकन लागी
0: कई कोट प्रभु कौ खोजंते
1: पार बम लहांते
0: कई कोट दर्शन प्रभ प्यास।

0: बहुर अवतार अष्टपति संत कै दुखन आर जा कटै
1: संत कै दुखन जमते नहीं छुटै
0: संत कै दुखन सुख सब जाए
1: संत कै दुखन नरक में बाए
0: संत कै दुखन मत होए मलीन
2: संत कै दुखन सो बाते लीन
0: संत के हते को रखे न कोए
1: संत कै दुखन दान भ्रष्ट होए
0: संत कृपाल कृपा जे करै
1: नानक संत संग निंदक भी करै
0: संत के दुखन ते मुख पवै
2: संतन कै दुखन काग जो लवै
0: संतन कै दुखन सर्प ज्योन पाए
2: संत कै दुखन त्रिग ज्योन करमाए
0: संतन कै दुखन तृष्णा मैं जलै
2: संत कै दुखन सब को चलै
0: संत कै दुखन तेज सब जाए
2: संत कै दुखन निजन चाए
0: संत दुखी का थाओ को नाहे
2: नानक संत पावे ताओ विगत पाहे
0: संत का निंदक महा अतताई
2: संत का निंदक हिंटिक न पाई
0: संत का निंदक महा हत्यारा
2: संत का निंदक परमेश्वर मारा
0: संत का निंदक राज तेहीन
2: संत का निंदक दुखिया दीन
0: संत के निंदक को सर्व रोग
2: संत के निंदक को सदा वियोग
0: संत की निंदा दुख मैं दुख
2: नानक संत पावे ता उसका भी उन्मुख
0: संत का दुखी सदा अपवित
2: संत का दुखी किसे का नहीं मित
0: संत के दुखी को डान लग
2: दुखी को सब त्याग
0: संत का दुखी महा अहंकारी
1: संत का दुखी सदा बेकार
0: संत का दुखी जन में मर संत के दुखी कौ नाही ठाओ
2: नानक संत पावे ताले मिलाए
0: संत का दुखी अद बीच ते टूटे
2: संत का दुखी किते काज न पूछे
0: संत के दुखी कौ उद्यान परमाई
2: संत का दुखी उजड़ पाइये
0: संत का दुखी अंतर ते थोथा
2: क्यों सांस बिना मृत की लोथा
0: संत के दुखी की जड़ किश नाहे
2: आपण बीज आपे ही खाए
0: संत के दुखी को अवर न रखन हार
2: नानक संत पावे ता लए वार
0: संत का दुखी एयों बिल लाए
2: जो जल बिहून मछली तड़पड़ाए
0: संत का दुखी भूखा नहीं राजा
2: जो पावक किंद नहीं त्रापे
0: संत का दुखी छुटै अकेला
2: जो मुआड़ दिल के दमाहे दुहेला
0: संत का दुखी धर्म ते रहत
2: संत का दुखी सदमितया कहत
0: किरत निंदक का तुर ही पया
2: जो सुपावे
0: संत का दुखी बिगड़ रूप होए जाए
2: संत के दुखी को दरगाह मिले सजाए
0: संत का दुखी सदा सहकाई है
2: संत का दुखी नाम न जुवाइये
0: संत के दुखी की पूजा न आशा
1: संत का दुखी उठ चले निराशा
0: संत का दुख न त्रष्टै कोए
1: जैसा पावे तैसा कोई होए
0: पाया किरत न मिटै कोए
1: नानक जाने सच्चा सोए
0: सब घट तिसके ओ करने हा
1: सदा सदा तिसको नमस्कार
0: प्रभु की उस्तत करो दिन रात
2: तिसे ते आओ सास रास
0: सब काश वरत है तिस

0: सदा सदा जानो बे सुखी
1: एको एक एक पछान
0: इत उत की असो जी जान
1: नाम संग जिसका मन मान्या
0: नानक तिने निरंजन जान्या
1: पर प्रसाद अपने आप सुजे
0: जिसकी जानो तृष्णा बुझे
1: साध संग हर हर जस कहत
0: सर्व रोग ते हर

0: जन्मे ने किछ मरे
1: आपन चले तो आप ही करे
0: आवन जावन दिष्ट अंदिष्ट
1: आज्ञाकारी तारी सब सृष्ट
0: आपे आप सगर में आप
1: अनेक युग तरह चथाप।

0: प्रभ की जोत सगल घट सो है
1: बलवंता होई क्या को गर्व है
0: जा सब किश तिसका दिया दर्ब है
1: अत सूरा जे को कहावे
0: प्रभ की कला बिना कहता वह
1: जे को होए वह दादार
0: तिस देन हार जाने गवार
1: जिस गुर प्रसाद दूटे हो रोग
0: नानक सो जन सदा अरोग
1: जो मंदर को तम थमन
0: त्यों गुर का शब्द मन असथमन
1: ज्यो पागाना चढ़तर
0: प्राणी गुर चरण लगत निस्तर
1: ज्यो अंधकार दीपक प्रकाश
0: गुर दर्शन देख मन होए विगास
1: जो महाउद्यान में मार्ग पावे
0: त्यों साधु संग मिल जोत प्रगटावे
1: चंदन की वाचो तूर
0: नानक की

0: रह अजान
1: कौन वस्तु आई तेरा संग
0: लपट रहे ओ रस लोभी पतंग
1: राम नाम जप हृदय माहे
0: नानक पात से ती घर जाहे
1: जिस वखर को लैन तू आया
0: राम नाम संतन घर पाया
1: अजब महान देहु मन मोल
0: राम नाम हृदय मैं तोल
1: लाद खेप संत संग चाल
0: अवरत आग बिखिया जंजाल
1: धन धन कह सब गोए
0: मुख उजल हर दर गह सोए
1: बापार विला बापार
0: नानक ताके सद बलहार
1: चरण साध के तोए तोए पियो
0: हर प्रसाद को अपना जियो
1: साध की तूर करो स्नान
0: साध ऊपर जाइए कुर्बान
1: साध सेवा बड़ भागी भाई
0: साध संग हर कीर्तन गाइए
1: अनक बिघन ते साधु राखे
0: हर गुण गाय अमृत रस चाखे
1: ओट गई संत जराया
0: सर्व सुख नानक तेहे पाया
1: मृतक

0: आनंद रूप मंगल सद जाकै
1: सर्व तोप सुनिए कर ताकै
0: राज मैं राज जोग मैं जोगी
2: तप मैं तपीसर ग्रस्त मैं भोगी
0: त्याए त्याए भगतै सुख पाया।

0: तू क्या लटावे मूर्ख मना
1: सो तमीत कुटुंब अरबनता
2: कहो तुम कवंचनाचा
1: राज रंग माया बिस्थार
0: कहो कुन छटकार
1: अस्वहस्ती रख अश्वारी जन दिए तिस बुझे ना बेगाना गुर की मत तू लेहे आने हर की भगत करो मन मीत
0: निर्मल होए तुम्हारो चीत
1: चरण कमल राखू मन माहे
0: जन्म जन्म के किल विक जाहे
1: आप जपो अवरा नाम जपावो
0: गत पावो
1: सार भूत सत हर को नाओ
0: सुवाए नान गुण गाओ
1: गुण गावत तेरी उतर समैल
0: जाए हो मैं विक पैल
1: होहे अचिंत बस सुख नाल
0: सास ग्रास और नाम समाल
1: षाड सियानप सगली मना
0: सास संग पावे
1: हर पूंजी सांच करो व्यवहार सर्व निरंतर एको देखो
2: नानक जाके मस्तक लेखो
1: एको जाप एको सालाहे
0: एक सिमर एको मन
1: एक सके गुण गाओ अनंत
2: अंतन जाप एक भगवान
1: एको एक एक हर आप
2: पूर्ण पूर्ण व्याप
1: अनेक विस्थार।

0: मन बिगसै साध चरण धोए बिरला को पावै संग गुरु प्रसाद नाम जप लया
1: की उपमा कही ना जाए
0: नानक रहया सर्ब समाए
1: बख्शान दीन दयाल
0: भक्त वशल सदा कृपाल
1: नाथ नाथ गोविंद गोपाल
0: सर्व कटा करत प्रतपाल
1: आदि पुरुष कारण करतार
0: भक्त जना के प्राण आधार
1: जो जपे सोए पुनीत
0: भक्त पाए लावे मन ही
1: हम निर्गुण और नीच जान
0: नानक तुमरी शरण पुरख भगवान।

0: जब कार हो काश ना दृष्टेता
1: आप कुल तब कहते होता
0: जब तारी आपन सुन समाद
1: तब बैर विरोध के संग समात
0: जब इसका वर्ण जहन ना जापत
1: तब हर सोग कह किसे व्यापत
0: जब आपने आप पार ब्रह्म
1: तब भोग कह किस होवत परम
0: आपन खेल आप वरतीजा
1: नानक करने हार ना दूजा
0: जब होवत प्रभु केवल तनी
1: तब बंद मुक्त कह किस
0: जब एक हर अगम अपार
1: तब नरक सुरग कहो कौन अवतार
0: जब नर गुण प्राप्त सहज सुभाए
1: तब शिव सख्त कहो के तठाए
0: जब आप है आप अपनी जोत सर
1: तब कवन निडर कवन कत डर
0: अपन चलते आप करने हार
1: नानक ठाकुर अगम अपार
0: अब राशि सुख अपने आसन
1: कहे जन्म मरण कहो कहा विनाशन
0: जब पूरन करता प्रभ सोए
1: तब जम की त्रास कहो के सोए
0: जब अवगत अगोचर प्रभ एक
1: तब चित्र गुप्त किस पूछत लेखा
0: जब नाथ निरंजन अगोचर गादे
1: तब कौन छुटे कौन बंधन पाते
0: अपने आप ही अचर्जा
1: मान के अपन रूप आप ही ऊपर जा
0: जह निर्मल पुरख पत होता
1: तह बिन मैल कहो क्या तोता
0: जह निरंजन निरंकार निर्वाण
1: तह कौन को मान कौन अभिमान
0: जह स्वरूप केवल जगदीश
1: शाल शिदर लगत कहो कीस
0: जय ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समाव
1: किसै भूख कवन त्रिपताव
0: कर्ण करावन कर्ण हार
1: नानक करते का नाहे सुमार
0: जब अपनी शोभा अपन संग बनाई
1: तब कवन माए बाप मित्र सोत पाई
0: जय सर्व कला आप है परवीन
1: कह वेद कतेव कहा कोचीन
0: जब अपने आप और सार
1: सगन अप सगन कहा बीच

0: संत जना का पेखन सब ब्रह्म,
1: संत जना का हृदय सब धर्म,
0: संत जना सुने शुभ बचन,
1: सर्व व्यापी राम संग रचन,
0: जिन जाता तिस किए रहत,
1: सत बचन साधु सब कहत,
0: जो जो होए सोई सुख मान,
1: कर्ण करावन हार प्रभ जान,
0: अंतर बसे बाहर पी ओही,
1: नानक दर्शन देख सब मोही,
0: आप सत किया सब सत,
1: जिस प्रभ ते सगली उत्पत,
0: किस भावै ता करे बिस्थार,
1: जिस भावै ता एकंकार,
0: अनक कला लखी नह जाए,
1: जिस भावै तिस लय मिलाए,
0: कवन निकट कवन कहिए दूर,
1: आपे आपे आप भरपूर,
0: अंतरगत जिसे आप जनाए,
1: नानक तिस जाने आप बुझाए,
0: सर्व भूत आप वरतारा,
1: सर्व नैन आप वेखन हारा,
0: सगल समगरी जा का तना,
1: आपन जासे आप ही सुना,
0: आवन जान एक खेल बनाया,
1: आज्ञाकारी कीनी माया,
0: सब कै मद अलिप तो रहै,
1: जो कहि कहना सो आपे कहै,
0: आज्ञा आवै आज्ञा जाए,
1: नानक जा पावै ता लै समाए,
0: इसते होए सो नाही बुरा,
1: औरा कहो कने कछु करा,
0: आप भला करतूत आतनी की,
1: आपे जाना अपने जी की,
0: आप साच धारी सब साच,
1: बोध बोध अपन संग राच,
0: ताकि गत मित कही न जाए,
1: दूसर होए ता सो जी पाए,
0: किसका किया सब परवान,
1: गुर प्रसाद नानक हो जान,
0: जो जाने तिस सदा सुख होए,
1: आप मिलाए लय प्रभ सोए,
0: ओ धनवंत कुलवंत बतवंत,
1: जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत,
0: धन धन धन जन आया,
1: जिस प्रसाद सब जगत तराया।

0: राम नाम सुन रसना कहते
1: प्रसाद दया प्रवतारी
0: नानक निभी खेप हमारी
1: सबके औसत करहौ संत मीत
0: सावधान एकाग्र चीत
1: रुखमनी सहज गुबिन गुण नाम
0: जिस मन बसै सुहोत निदान
1: सर्व इच्छा ताकी पूर्ण होए
0: प्रधान पुरख प्रगट सब लोए
1: सबसे ऊज पाए स्थान
0: बहुर न हो वै आवन जान
1: तन खाट चला जन सोए
0: मानक जसै प्राप्त होए
1: प्रेम साध रिद नव निद
0: बुद्ध ज्ञान सर्व तह सिद्ध
1: विद्या ताप जोग प्रभ ध्यान
0: ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम इस मान
1: चार पदार्थ कमल प्रगास
0: सब कै मद

0: देव निंदन साचर भूत भवेख भवान जपेंगे।
1: जीव जत जल में थल में पाल ही पाल में सब थाप थपेंगे।
0: उन प्रतापन बाढ़ जैत तुन पापन के बहु पुंज खपेंगे।
1: साल समूह प्रसन्न पर जागल सतर सब।

0: भगवान को भेद न पायो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
1: आप से आई दसमी कभी बात बेनती।

0: अपने बोझ विचार
1: सब हीते रहत निरालम
0: जानत भेद भेद आलम
1: निरंकार निर्विकार निलंब
0: आर अनिल अनाद असंभ
1: का मूढ़ चारत पिंदा
0: जाको भेद न पावत भेदा
1: जाको कृपाहन अन

0: मान जाओ प्या प्रव्यागम सुनया हर मंगल गाओ सखी ग्रह मंदिर बनया
1: गाओ मंगल ने सखी शोक दुख न व्यापे
0: गुर चरण लागे दिन सपाके आपना पर जापे
1: अनहत बाणी गुरु

क्रोध लोभ मोहंकार तो बचाउणा, श्रद्धा भावना प्रीत अदब सहित अपने दर घर दी सेवा दे योग बना लेना, सतगुरु जी चढ़दी

दीवाना नू संपूर्ण मुख रख दिया होया आप जी के हजूर कड़ा प्रसादी देग हाजिर है। दर प्रवान हुए प्रवान होया प्रसाद संगत विच वर

अल्लाह चौथा हर पहलड़ी लाव पर विरती कर्म दृढ़ाया बलराम जियो बाणी ब्रह्मा वेद धर्म दृढ़ हो पाप तजाया बलराम जियो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानियो गुरु रूप साध संगत जी आप वडभागी हो जो अमृत वेले गुरु चरणा दियां हाजरियां भर के सतगुरु के दर कर दियां खुशियां प्राप्त कर रहे हो। सतगुरु जी कृपा करन सबना दी हाजरी दर प्रवान कर लैन दरों करों चढ़ दियां कला बख्शिश करके निवाजन। गरीब नवाज सतगुरा ने कृपा की है पावन दीवाना दी संपूर्णता ते अज दे इलाही दरगाही श्री मुखवाक बख्शिश किते हन जो धन गुरु रामदास सोढ़ी सुल्तान सतगुरु जी की अमृत रसना तो सूही रागंदर छंत रूप विच ये पावन पवित्र शब्द अज हुक्म रूप विच बख्शिश किया है जिसनु आपां लावां दा शब्द भी आखते हाँ। धन गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी ने इस पावन पवित्र शब्द अंदर जीव आत्मा दे उस परिपूर्ण परमात्मा रूपी पति दे नाल किवें मिलनी होवे किवें आनंद कारज होवे इह जुगत इह भाव इस पावन बाणी विच दस्या है कि जदों जीव आत्मा संसार विच आ करके पहला प्रविरति कर्म भाव धर्म के कर्म विच प्रविरत हुंदी है दृढ़ हुंदी है फिर गुरु मिलाप सदका उन्हां कर्मां राही अमल विच अपने जीवन विच उन्हां कर्मां नूं लियांदी है फिर मन विच बैराग पैदा हुंदा है चाओ पैदा हुंदा है प्रभु परमेश्वर दा फिर अंतम उस जीव आत्मा नूं मिलाप हुंदा है ते उह सदा लई सुहागण बन जांदी है। इह पावन लावां दा पाठ जीव आत्मा दा परमात्मा दे नाल सच्चा मिलन किवें होवे इह सतगुरु जी ने दर्शाया। गुरु कृपा करे अज एतवार दा दिहाड़ा है विशेष करके धन गुरु अर्जुन देव सच्चे पातशाह दा तार पिता महाराज जी दे व्याह पुरब दे संबंध अंदर इलाका निवासी संगतां वल्लों परसों रोज तो तुरकी बाणी दे श्री अखंड पाठ प्रारंभ होए हन अज भोग पैने हन उपरंत गुरु दरबार सजनगे सो आप संगतां ने वध चढ़ के हाजरियां भर के धन गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी दियां खुशियां प्राप्त करनियां हन। 30 तरीक नूं गुरु हरगोबिंद साहब महाराज सच्चे पातशाह जी का पावन प्रकाश पुरब है सो आप जी ने उस दिन भी हाजरियां भर के गुरु घर दियां खुशियां प्राप्त करनियां जी। आओ प्यार सहित इलाही बाणी दे कीर्तन भाई साहब भाई ओंकार सिंह अते उन्हां दे जत्थे पासो सरवण करिए। समूह संगत का धन्नवाद भुलां चुकां दी खिमा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

0: तिलकलीलाटं द्वैतोति वस्त्र कपाटं जे जानस ब्रह्मं कर्मं सब फोकट नीचो कर्मं।
1: कहो नानक नीचो त्यावे विण सतगुरु वाट।

सत्संग जी। बोलो जी, वाहे गुरु वाहे गुरु। एक ओंकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहायवार श्री बोधी पाशाही दसवीं प्रथम भगवती समर कह गुरु नानक लई त्याय करे अंकित कुरते अमरदास रामदास से हुए सहाय अर्जुन हर गोविंद रू सिमर श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याय सब दुख जाए तेग बहादुर सिमर है घर नो नि सब थाई हुए सहाय दसवें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सब थाई हुए सहाय दसा पातशाह के पितरात्मक स्वरूप साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब के पास दर दसते अंतर के घर सच बोलो जी वाहे गुरु। गरीब महाराज आप जी दे पांच प्यारे चार साहबजादे चाली मुक्त हटिया जपिया तपिया जिन्हें नाम जपया वन चख्या दही चलाई ते वाहि देह कंडेड़ कीता तेना प्यारे सत्यारे नी कमाई दा ते अंदर की बोलो जी वाहे गुरु। जिन्ना सिंघा सिंघणिया धर्म ये सही दिते बंद बंद कटवाए खोपड़ियां लुआईया चरखड़िया ते चढ़े आरे नजर आए गए गुरुद्वारे सेवा वास्ते कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं आ रहा सी किसे तरीके सत्संग निभाया ते ना दी कमाई दा ते अंदर की बोलो जी वाहे गुरु। बोलो जी वाहे गुरु। प्रथम है सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे नाम चेता है जित आमर का सद का सर्व सुख हो जहां जहां गुरु खालसा साहब सरचर्या देख देख की फतेह वृद्ध की पहच पद की जीत श्री साहब जी सहाय खालसा जी के बोलबाले बोलो जी वाहे गुरु। सिखा नु सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विशाह दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहब दर्शन स्नान क्योंकि यहां चंडे बुंगे जुगो जुगा टन धर्म का जयकार बोलो जी वाहे गुरु। सिखा का मन नीवा मत उची मत पत के राखे आप वाहे गुरु। गुरु जी महाराज पंथ सदा शाह दार जी हो गुरुद्वारा ननकाणा साहब पंजा साहब होर गुरुद्वारे गुरुधाम जिन्हों आप दे पंथ नूं छोड़िया गया उन्होंने देखो दर्शन की दार से सेवा संभाल दिता है अपने खालसा जी ने बख्शो हेर ओटिया की ओट गुरु न्यात्रिया यात्रे गुरु धन धन गुरु ग्रंथ तार जी हो दोए कर जोड़ करो अरदास कुछ पावे दाने रास हे की बनवास जी आपके चरण कमला अरदास तार जी आपने बख्शिश की है अमृत वेले प्रकाश पा रहे हो संगत ने दर्शन दर जाके निहाल तार जी हो बेहंत बाणिया के पाठ ऐस वकीर बनवाई राज किसी गंडाल के चरण जाठा की वार संपूर्ण कीर्तन किए छह बड़िया नाम शब्द कीर्तन तार कृपा करो तो इं भुला चुका जी माफी बख्शो पढ़ी हुई बाणी सोच के सचखंड प्रवान करो बाणी का भाव सारिया संगत हिरदा मिसान की कृपा करो जी अगो तो शुद्ध पित्र बाणी तारी मन बुद्धि बख्शिश करो संत ग्रंथ तार पिता जी आपके चरण कामना अरदास तार जी ने खुश साहब श्री गुरु पंजवें पातशाह गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी ने व्याह पुरब दिया खुशियां तार पिता जी हो गरीब नवाज आपके चरण का धनबाद करते हैं शुक्रिया अदा करते हैं पिंड श्री शंकर इलाका नवासी संगतों ने तार पिता जी गुरु साहबां के व्यापर दिया खुशियां आप भी पत्रकारी तुरकी बाणी ने खंड पाठ साहब प्रारंभ करवाए हैं गुरु सच्चे पातशाह जी आप सेवा लै रहे हैं कृपा करो तार जी मेहर करो गरीब नवाज संगतों के सिर से मेहर प्रयास रखो संगतों के अज सारे काज निर्विघ्नता साहब तार कृपा करो गरीब नवाज अर्जन देव सच्चे पातशाह जी बख्शिश करो अपने सेवक आप राजमान रखो अति संगतों में सदा एकता स्वाद प्याज बख्शिश करके चाची कला बख्शो अति हमेशा वास्ते इतने आने वाले समय जी गरीब नवाज उर्बा चाची कला नजर आने वास्ते साफ संगत उद्यम बख्शा उत्साह बख्शना प्रेम की दाल बख्शो देवान बनाते रहने वास्ते चाल करा बख्श करो भावना दाल प्रबलता करो जी गुरु जी महाराज बख्श कर दता इन्हें खुशियां आप दिन बख्शिया दातों में पुत्र कलाम शाह देगा तैयार कर हाथ आप जी भोग लाओ शहीद प्रसाद सात संघ की रत्ना लायक होवे जो जी सके स्वाद स्वाद आप जी का नाम जप बख्श करो दतार संगत वालों लंगर की ढोट सेवा रही प्रबंध करनी कृपा करो दतार बेहंत बेहंत माए सेवा रही चरण प्रमाण कमाइया सबल करो जी गुरु की महाराज कृपा करो आपके चरणों सेवा कर रहे सारे टैलिया संघा संघणिया तंदुरुस्ती बख्शो चाटी कर बख्शो अति सदा ही इस तरह अपने चरणों सेवा की भावना कृपालता करो गरीब नवाज जी ये दतार जी मेहर करो अमृत वेले तो लैके दर्ती आई साफ संगतं हाजी दर प्रवान करो घड़िया लिखे लाओ संगतों का दर से फिर फुट पेटा प्रवान शुभकामना पूर्ण करो जी गुरु की महाराज कृपा करो खालसा पंथ एक खालसा पंथ अति सिख कौम एकता स्वाग प्याज बख्शिश करके सत दो दाल बख्शो ध्यान ना जोड़ो गुरबाणी का प्यार बख्शो हर मैदान दीवान फतेह बख्श पालता करो जी गुरु की महाराज दुरुद राजा कराने बैठी लाल किता कि सरवण करी सारी संगत की हाजी प्रवान करो घड़िया लिखे लाओ
ਸਾਰਾ ਆਪਣੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਬਖਸ਼ੇ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੇਅਤ ਮਾਇਆ ਆਨਲਾਈਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਸੇਵਾ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸੰਗਤਾਂ ਮਾਇਆ ਭੇਟਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਚਰਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਸਫਲ ਕਰੋ, ਕਾਰਜ ਵੱਧ ਦਿੱਤਾ, ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਸਭਾ ਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ ਜੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਵਰਗ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਆਪਣੀ ਸੰਗਤਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਲ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਬਖਸ਼ੋ, ਆਪਣੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਨਿਰਵਿਘਤਾ ਸਾਥ ਪੂਰਨ ਕਰੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤਾਂ ਜੀ ਆਪ ਰਾਜਮਾ ਰੱਖੋ ਜੀ, ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਦਾਦਿਕ ਪਾਲਤਾ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸੇਖ ਕੌਮ ਏਕ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਕੇ ਪਾਲਤਾ ਕਰੋ, ਦਿੱਤਾ ਬਿਰਧ ਕਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਰ ਕਰ ਸਦਾ ਸਰਦਾਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਆਪਣੇ ਦੋਹਤੇ ਦੋਹਤੀਆਂ ਜੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਚਾਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੇਹਤ ਮਾਰੇ ਹਾਲ ਚਰਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਜੀ, ਪੂਰਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਡਾਕਟਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹੰਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਚਾਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਬੇਹਤ ਮਾਰੇ ਹਾਲ ਚਰਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਜੀ, ਕ੍ਰਿਮੀ ਜਵਾਹਰ ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਸਿੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੱਚਾਦੀ ਚਾਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਬੇਹਤ ਮਾਇਆ ਪੇਟਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਹਤ ਮਾਇਆ ਪੇਟਾ ਆਪ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਕੇ ਆਂਡੀ ਚੰਡੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੋ ਦਾਤਾ ਜੀ, ਆਪ ਰਾਜ ਵਰਖੋ ਕਮਾਈਆਂ ਸਬਰ ਕਰੋ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੀ ਵਿਭਾਗ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਓ ਮਿਹਰ ਕਰਨੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਰ ਤੇ ਆਈਆਂ ਸਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਆਦਿ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ, ਘੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾਓ ਸੰਗਤਾਂ ਦਰ ਦੇ ਸਿਰ ਹੁਣ ਪੇਟਾ ਬਣਾਉਣ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾ ਪੂਰਨ ਕਰੋ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬੇਅੰਤ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅੰਤ ਮਾਇਆ ਬੇਅੰਤ ਰਸਤਾ ਆਪਦੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਗਾਂ ਸੋਨੇ ਮੰਦਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ, ਕਮਾਈਆਂ ਸਫਲ ਕਰੋ, ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾ ਪੂਰਨ ਦਿੱਤਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਸੋਖ ਚਾਂਡੀ ਚਾਂਡੀ ਵਾਲਾ ਗਾੜੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੋ, ਅਰੇ ਗਰੀਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਅੰਗ ਸਾਡਾ ਬਖਸ਼ੋ ਸਾਰੇ ਸਿਰ ਆਪਣੇ ਚੰਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰੱਖੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਦਿੱਤਾ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਓ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ, ਭੁੱਲਤ ਮਾਹੀ ਬਖਸ਼ੋ ਦਿੱਤਾ ਕੋਈ ਦੁਰਗੁਨਾਮੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਪਰੰਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿਆਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜਾਜ ਦੇ ਕਿਹਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਸਤੇ ਰਮਦਾਸ ਜੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ, ਰਹਿੰਦੇ ਘਰ ਸਵਾਰ ਕੇ ਚੰਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਬਣਾਓ, ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਬੁੱਧ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਿੱਤਾ ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੇ ਆਪਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।

जो प्रभ को मिल भोज है कोरी शब्द मैल राज करेगा खालसा आकी रहे ना कोई क्वार हुए सा मिलेंगे बजे शरण जो हो वाहे गुरु नाम जहाज है चले दो तेरे पा जो

पाप तजाया बल राम जियो, हर पहलड़ी लाव परवृत्ति कर्म दड़ाया बल राम जियो, बाणी ब्रह्मा वेद धर्म दड़ो पाप तजाया बल राम जियो, धर्म दड़ो हर नाम ते आवो, सिमरत नाम दड़ाया सतगुर गुर पूरा आराधाओ,

गुरु प्यारे साथ संगत जी, धन धन श्री गुरु रामदास जी द्वारा बख्शिश की गई निवेकली शैली पड़ताल जिस विच ताला परत दिया रहिंदियां हन, अजिही विशेष शब्द रचना गुरबाणी दी जिस विच द तालस कीप ऑन चेंजिंग पड़ताल परत ताल तो बनया है। कुछ विद्वान पट ताल यानी पंज तालां दा प्रयोग ये भी कहंदे ने। आओ इस पावन शब्द का कीर्तन करिए। सारंग महला चौथा सिरलेख है, जप मन निरपौ। जप मन निरपौ सत सत सदा।

5 मिनट का समा है, एक छोटा जा शब्द दो अंतरियां दा, आओ सारे राग गूंद विच मुको तार ले रामा तार ले, इसका कीर्तन करिए।

जिन्नी भी संगत बैठी है एक बारी सारे गाओ, जिन्हां दी रसना ते ये पावन वचन भी गुरु अर्जन देव जी का है, वो रसना भागा वाली बन जाती, सुते हुए कर्म जाग जाते, खुलिया कर्म कृपा पई ठाकुर कीर्तन हर हर गए। जिवें शरीर दियां लोड़ां ने ना, जल पानी प्रशादा तेरी रूह की खुराक यही है, अपनी आवाज नाल गा के हाजरियां लवाओ। समा समाप्ति वल है। गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी सदाई बाणी दा नितनेम दा गुरु करनाल प्रेम प्यार बनया रहे, तेरे दर्शन करके फिर कारोबार ते जाए।

कहे कबीर मोह ब्याह चले है पुरख एक भगवान तंतम सह श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज माता गंगा जी तिना दे सुख आनंद कार दी समूह साध संगत नूं दास दे जत्थे वालों लख लख वधाई होए सो इनिक सेवा प्रवान कुनी होईआं भुलां चुका दी खिमा आओ अगले प्रोग्राम सरवण करी सत्कारयोग भाई साहब भाई अमृतपाल सिंह जी उन्हां पासों अगले कीर्तन सरवण करी जी दस वालों फतेह प्रवान करो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

0: इतनी सेवा परिवार करना जी फुला चुका दी खेमा आउट कार्यो पाई साहब पाई हर प्रीत सिंह जी दरागी जथे पासों पावन पवित्र कीर्तन शरण करिए जी बुलाओ फतेह वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह धन गुरु
1: Thank you.